मैं ठट्टर लावल जो चाहे पारवा तीत ली जीवू की ना रखें तो अर्चे हमारे अनलिवी की तिहानो राना चल घर ते ये मत वर्तन देख को बाहर आएगे यार शिरगी को बीच उगवा के नष्टा निश्चित शागा हर तलातुं हो तो ग्रलाशुई हवसनास हादोरेज थक्करे तलाबा तेरी बिल्कुल बस्ते बाबा तेंगलो उधर मुट्ठोगे लेवल जात मुनार तीन ईमान बस्ते चिवुने से चांसलों पारगों तलासा त्यूबीगिं बी पोस्ते शिरिया बात तोरने शिरिगे अल्तरी लोई तोरन दस्त्रां बच्चे तेरो तो दिया ते पेल्टा थोस्को उर्तकम बसो पुरीकन हंजंग अंदर टिक्की उर्वेगा हेनो शिरिकी उम्नो बालगा उम्नो शिरिकी अर्तांग आयत अख्तरात परोला तपलाशुई एनो विसो चौगने भी लिवी हायोगन तोतसिंह होलीगी कोई ते तोतासिंह शिरिकिंग हेनो